जी हाँ बिल्कुल, आज मौसम बड़ा बेईमानी। अगर क्राइस्टचर्च में हम देखें तो आज बारिश ऐसे हो रही है जैसे लगता है कल है ही नहीं। जी हाँ, रेडियो केजे का साथ है, मैं हूँ आपका साथी आरजे क्रिश, और एक और संडे को हम आपके साथ शामिल हो चुके हैं। आज आरजे जी भी हमारे साथ नहीं है क्योंकि आरजे जी भी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और मैडम नीड्स अ लॉट ऑफ रेस्ट क्योंकि आफ्टर वेरी वेरी हेक्टिक एंड अ वेरी बिजी वीकेंड। और इस वीकेंड में काफ़ी कुछ हुआ, क्या हुआ ये सब बात हम आज प्रोग्राम के दौरान ज़रूर करेंगे। और वैसे आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड क्राइस्टचर्च। वैसे बाय द वे सभी को हैप्पी फादर्स डे। जी हाँ, हैप्पी फादर्स डे हम आप सभी को कहना चाहेंगे, और जितने भी फादर्स अराउंड न्यूजीलैंड या कहीं पर से भी आप सुन रहे हैं, हमारे साथ अभी आप शामिल हो चुके हैं, तो आपको हम हैप्पी फादर्स डे कहना चाहेंगे। और यही आशा है, विनती है कि जिस तरह से आपके पिता ने आपको लुक आफ्टर किया आपकी अच्छी तरह से, उसी तरह आज आप खुद एक फादर है तो आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही मिलजुल कर और ये फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग अभी हम फेसबुक लाइव पे तो भी नहीं गए हैं, बहुत ही जल्द हम अपने फेसबुक लाइव पे जाने वाले हैं, पर जैसे ही फेसबुक लाइव में जाएंगे तो ज़रूर आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके साथ साथ उधर क्राइस्टचर्च मेन प्रिजन से हमारे साथ नीरज जी, अगर आप अभी भी सुन रहे हैं, आपको आपके फ्रेंड्स को आप सभी को हैप्पी फादर्स डे, और इस गीत में हम आप सभी को याद कर लेते हैं। लिस्टिंग टू रेडियो के जलो गर्ल ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया।

जी हाँ बिल्कुल, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। इस गीत में हम आप जो लोग हमारे साथ कहीं से भी जुड़े हैं, आप सभी को याद करना चाहते हैं। और जैसे हमने कहा कि आज फादर्स डे है, तो जगह जगह पर फादर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप भी कहीं से सुन रहे हैं, आप अपने फैमिलीज के साथ है, आप अपने प्रिय के साथ है, तो जहाँ से भी आपने आज फादर्स डे मनाया है या जहाँ से भी आपने हमारा जो प्रोग्राम सुनकर आज आप हमारे साथ फादर्स डे के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, हम यही प्रार्थना और विनती करते हैं कि हमेशा आप अपने फादर के साथ, हमेशा आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ही जो फादर्स डे सेलिब्रेशन ये करते रहे चले। जैसे हमने कहा कि आज हम एक से एक गीत ऐसे लेकर आएंगे जो ज़्यादा करके हम सुनते नहीं हैं या खास तौर पर हम फादर्स डे पर सुन सकते हैं, तो इस गीत में भी हम आप सभी को याद कर लेते हैं। लिस्टिंग टू रेडियो खेजे लोकल, ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया।

जी हाँ बिल्कुल, आज मौसम बड़ा बेईमान है। जितने लोग इधर क्राइस्टचर्च से सुन रहे हैं या जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, क्राइस्टचर्च में जो मौसम है, कल आज सुबह से बारिश काफ़ी हो रही है और इस बारिश के मौसम में जीबीजी का स्वास्थ्य लाभ यानी जीबी का जो स्वास्थ्य है थोड़ी, क्योंकि बारिश का ठंड होती है, लाइक पिछले काफ़ी दिनों से शी इज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड। रामायण के सारे जो भाग दौड़े वही देख रही है, जो हमारे रामायण का जो मेजोरिटी वर्क इज़ ऑल डन बाय हर, तो आई थिंक यू नो द टायर्डनेस गॉट द बेटर ऑफ हर, बट वी आर होपिंग and hoping she'd rest and get well soon. Doreen Bhabhi ji hamare saath jud chuke hain. Bhabhi namaskaram. Sanjeev Bhagwani ji kaise hain? Deepak Vinita ji, happy Father's Day. Ji haan bilkul, kahin jaiye mat. Aaj hum sabhi fathers ko happy Father's Day ke jitne log hamare saath jude hain, aapke paas ye mauka hai. Chaliye aap apne jo father hai ya jisko bhi aap as a fatherly figure dekhte hain, shayad aapke saath hai is sansar mein ya nahi hai, aap apne father ka naam wahan pe likh sakte hain aur radio kahiye Krish. Ji haan, apne awaaz mein aapke father ko happy Father's Day kehna chahenge. To could be anyone, जिनको भी आप फादली फिगर की तरह, जैसे माय डैड देवा लाइट अप्पा इज नो मोर, पर आई ऑलवेज एवरी फादर्स डे को आई नो कि कहीं ना कहीं से इज गिविंग मी द ब्लेसिंग, तो हम उनको कहीं ना कहीं से विश कर लेते हैं. तो और भी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ओम चंद्रा जी है, सोनाली चौहान जी. सोनाली जी, आई थिंक वी मेट यू एट हरियाली थीच इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो कैसे हैं? एंड दिलेश मैथ्यू ब्रो, डू नॉट गो एनीवेयर, क्योंकि आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट द अमेजिंग इवेंट जो कल आप लोगों ने किया. जी हाँ, KCF का जो टीम है हमारे साथ, हमारे अलिया जी आ चुके हैं और जिस तरह से कल इन लोगों ने एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही खूबसूरत ओनम सेलिब्रेशन 2026 किया, हम सभी पहुंच चुके थे लिंकन, जहां से सुबह 11 बजे से जो ओनम सदिया है ये मिलने लगा था, फिर ओनम सदिया के साथ स्टेज पे एक से एक बढ़िया परफॉर्मेंस, और फिर अराउंड 3:30 द स्टेज वाज सेट ऑन फायर बाय प्रदीप बाबू एंड हमारी मृदुला जी. मृदुला इज गॉट सच अ ब्यूटीफुल वॉइस, मृदुला वारिया, दोनों इंडिया से, यस इंडिया से हमारे साथ आए थे. व्हाट एन अमेजिंग, व्हाट एन अमेजिंग शो. सो द एंटायर KCF टीम, थैंक यू सो मच. शांता भाभी कैसे हैं? नमस्कारम आपको भी, आई मीन अन्ना को भी हैप्पी फादर्स डे. सुधा जी आप भी हमारे साथ हैं, जितने फादर्स हमारे साथ हैं आप सभी को हम हैप्पी फादर्स डे कहना चाहेंगे. तो जैसे हमने कहा कि आज आपके पास चांस है, इफ़ यू वांट टू विश समबडी हैप्पी फादर्स डे यू कैन जस्ट राइट अराउंड देयर, अदरवाइज हम तो आपके योर बिहाफ हम सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे कहते ही चलेंगे आज प्रोग्राम में. जितने भी फादर्स हैं हमारे साथ, इफ़ यू आर विथ अस, थैंक यू फॉर अमेजिंग वर्क, थैंक यू फॉर द हार्ड वर्क यू हैव बीन डूइंग इन योर फैमिली, अपने फैमिली के लिए, और जितने भी लोग हैं आपके आसपास जिनके कारण आप सुबह शाम इतने इतने हार्ड वर्किंग हो एंड यू हैव बीन लुकिंग आफ्टर योर फैमिली. एंड आई थिंक फादर्स क्या होता है कि फादर्स का प्यार जो है वो तो

0: कमी दिखाते हैं, पर कोई नहीं, जहां पर भी अगर आपके फादर आपके साथ है तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस हैप्पी फादर्स डे के लिए, और शायद किसी कारण आपके फादर आपके आपके साथ नहीं है तो कोई नहीं, जहां से भी है जरूर आपको आशीर्वाद देते आपके जो पापा है, अप्पा है, डैडी है, जो भी बोलते हैं वैसे। बाय द वे, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप अपने फादर को क्या बोलते हैं? जैसे मैं साउथ इंडियन, फिजी का साउथ इंडियन, तो आई कॉल अप्पा, अप्पा बोलते हैं, और मेरे दोनों बच्चे मुझे पापा बोलते हैं। तो जितने लोग हमारे साथ हैं, प्लीज डू टेल अस कि व्हाट डू यू कॉल योर डैड, आप अपने डैड को क्या बोलते हैं? या कुछ लोग जो मैरिड कपल है, कुछ लोग हैव सीन कि जैसे जी भी प्यार से मुझे पापा बोलती है, शी यूज्ड टू कॉल मी क्रिश जी बट नाउ शी कॉल्स मी पापा। तो व्हाट डू यू कॉल योर हस्बैंड एज द डैड, और व्हाट डू यू कॉल योर डैड? सो डू टेल अस सो दैट वी कैन ऑल्सो शेयर। चलिए इस जस्ट गीत में हम आप सभी को याद कर लेते हैं, और एक बार फिर आप सभी को हैप्पी हैप्पी फादर्स डे। यू लिसनिंग टू रेडियो खेजेलो कॉल ओनली ऑन प्लेन मीडिया।
1: अपनी बर्थडे के दिन बच्चों को स्कूल से वापस बुलाकर भी उनसे मिल नहीं पाए। पता है कल मुझसे क्या कह रहा था? मेरा नाम बदल दो, बलबीर सिंह द सेकंड रख दो। मैंने कहा तो कहने लगा, अगर जॉर्ज द सेकंड, हेनरी द एथ हो सकता है तो बलबीर सिंह

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी

सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

जी बिल्कुल, पापा कहते हैं बड़ा। यस संजीव जी, देयर वी गो संजीव जी। यस, अगर जो लोग हमें फ्रिक्वेंसी पे सुन रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम संजीव भगवानी का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि संजीव जी बहुत ही सुपर टैलेंटेड है। हमने उनसे एक सवाल किया और संजीव जी को ऐसा ही पता चल गया। अभी हमें गाना बजा रहे थे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, फ्रॉम द मूवी कयामत से कयामत तक फिल्म पर्दे पे कौन था। तो संजीव जी का सवाल जो जवाब दिया है बिल्कुल सही है। जी हाँ, संडे जो शो है ये हम आप तक लेकर आ रहे हैं, एनजेड मोबाइल मॉर्गेजेस एंड इंश्योरेंसेस, हमारे जो मेजर स्पॉन्सर या द मेन टाइटल स्पॉन्सर फॉर रामायण अ टेल ऑफ टू किंग्स, जो 19 सितंबर को आ रहा है। टिकट्स आर सोल्ड आउट। तो एक बार फिर एनजेड मोबाइल मॉर्गेजेस एंड इंश्योरेंसेस के रॉबिन जी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस इवेंट। आपको हम आपको संध्या चेची को एंटायर टीम को बहुत बहुत बहुत बहुत थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग और हेल्पिंग अस ब्रिंग दिस इवेंट। इनके साथ साथ आवर सिल्वर स्पॉन्सर्स माया फूड्स, और इसके साथ साथ आर के बेंच स्टॉप्स, आवर ब्रॉन्ज स्पॉन्सर्स रे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, इनके साथ साथ आवर सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स टच इन ग्लो, एम सी केयर, अंशुज रियल फ्रूट आइसक्रीम, पोथीचोर, ब्लॉसम डेंटल, और इसके साथ साथ हमारे अच्छे साथी दोस्त नीले धमलिया जी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस इवेंट। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी पार्टनर्स पीपी प्रोडक्शन एंड जेके इमेजेस, सोशल मीडिया पार्टनर्स इंडियन सोशल कल्चरल क्लब, इनके साथ साथ डी एन जेड मीडिया पार्टनर्स प्लेन्स मीडिया, इट्स ऑन दैट साइड प्लेन्स मीडिया, इनके साथ साथ प्रिंट पार्टनर्स प्रिंट प्रो। भाई आपको भी कुछ प्रिंट कराना है क्राइस्टचर्च में, एक नाम याद जरूर याद रखिए, प्रिंट प्रो। तो यस, प्रोग्राम की ओर देखते हैं। आज फादर्स डे सेलिब्रेशन सभी जगह पे हो रहा है, काफी जगह पे शायद वेल फादर्स के लिए कुछ तो स्पेशल हो रहा होगा, शायद बाबक्यू हो रहा होगा या कहीं पर शायद कुछ अच्छा यू नो लजीज बन रहा होगा, जहां पर जो भी बन रहा है भाई एंजॉय। और वैसे तो फादर्स डे, मदर्स डे, किड्स डे एवरी डे होना चाहिए, फैमिली के लिए प्यार एक कभी भी कम नहीं होना चाहिए, शुड ऑलवेज रिमेन द सेम। पर चलो साल में एक स्पेशल डे होता है तो उसके लिए जरूर आप सभी को हैप्पी हैप्पी फादर्स डे। इस गीत के वेल वैसे तो आज फादर्स डे तो हम फादर्स का जो गीत है बजा रहे हैं, पर फ्राइडे को हमारे पास एक गीत की रिक्वेस्ट आई थी एंड वी कुड नॉट प्ले इट ऑन द फ्राइडे शो। तो ये गीत खासतौर पर से नीरज जी, आप क्राइस्टचर्च मेन प्रिजन से हमारे साथ प्रोग्राम को मजा ले रहे हैं, लीजिए आपकी रिक्वेस्ट पे जानू मेरी जा बहनोगी तेरी। यू लिस्निंग टू रेडियो केजलोकल ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया।

जी बिल्कुल पापा, मेरे पापा, तुमसा कोई नहीं. हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द अमेजिंग डैड्स आउट देयर. वेल, लुकिंग एट हमारे जो समय से समय मिला रहे, 6:39 एट द मोमेंट हमारे स्टूडियोज में टाइम हो चुका है और समय बहुत ही जल्द भाग रहा है. बस यहाँ से निकलकर हमें भी जाकर आराम करना है, कल के लिए तैयार होना है, क्योंकि यस, वापस कल बैक टू आवर फेवरेट प्लेस. वर्क, सभी का वर्क फेवरेट प्लेस है ना, मेरी तरह नहीं है. वेल, यू हैव टू गो ना, वरना हाउ डू यू पे बिल्स. मंगत थेरी जी, भाई सत श्री अकाल, की हाल पाजी, कितने हो आजकल? तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. और आज हम शो की ओर देखते हैं, तो आज फादर्स डे जो स्पेशल हम ये लेकर आए हैं, और सभी जो फादर्स हैं इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बहुत बहुत थैंक यू. और बाबू ब्रो, योर मैसेज केम टू कॉल मी, अनफॉर्चुनेटली आई गॉट बिजी आज स्टूडियोज में, बट यहाँ से निकलते ही हम आपको कॉल करेंगे एंड आई होप यू आर ओके ब्रो. एंड जैसे हमने कहा कि जब हम फादर्स डे, नमस्कारम ब्रो, नमस्कारम नमस्कारम, हैप्पी फादर्स डे टू यू एंड द एंटायर आवर सवेनी क्लेन. आप सभी को हैप्पी फादर्स डे हम कहना चाहेंगे. और कहते हैं कि जब हम फादर्स डे सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट तरीके से जो फादर्स डे सेलिब्रेशन होता है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड में या फीजी में भी है. सुमित, ओके, दैट्स माई कॉल एजेंटली. अच्छा, well, talking about Sumit, my brother Sumit, he's also here, one of the actors from Ramayana. Our Ramayana 19 September ko lekar aa rahe hain, aur aaj, well, Sumit ke baare mein, like I said, another amazing day. Recently, he had a knee surgery, but look at him, hardworking, he waited, he trained, and aaj wapas hamare Ramayana team mein, he was in his full outfit, he was in his full form, so it was so good to see that. Wanted to play in the Ramayana as a role of Kumkaran. Okay, next time, bro. Next time when we're doing a role, we'll probably ask Sumit to be not the, our Christchurch, not DJ Sumit. My nephew's name is also Sumit. He's based in Auckland. So yes, maybe next time we'll. We never know. Let's see. Radio KJ. Next time, agar kuch aisa lekar aayenge, to definitely aise roles aap logon ko de denge. वैसे जितने लोग सुन रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पर ये हंसी मजा कहाँ हो रहा है? It is all my family members and some of our dear friends. Who have joined us from around the world to listen to our program. Our Padma Aunty ji, Padma Wati,

आपको भी और आपके फैमिली को, सभी को हमारे तरफ से हैप्पी फादर्स डे इन वन ऑफ आवर फ्राइडे शो के जो स्पॉन्सर्स है यूनिक एथनिक कलेक्शन, याद रखिए यूनिक एथनिक कलेक्शन के जसपाल सिंह रंधावा एंड मनप्रीत जी इनके साथ। यस, अगर आपको भी एक अच्छे टिकाऊ और आउटफिट, अभी तो सारे फेस्टिव सीजन, नवरात्रि, गरबा, दिवाली ये सब आ रहा है, तो क्यों ना जाइए यूनिक एथनिक कलेक्शन बेस्ड ऑन ऑल्सवेल। जसपाल जी, आपको भी और आपके फैमिली को, आपके फ्रॉम योर किड्स एंड एवरीवन अराउंड यू, आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। चले इस गीत में वंस अगेन जितने फादर्स हैं इनको हम याद कर लेते हैं। यू लिस्टिंग टू रेडियो केज लोकल ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया।

जी हाँ बिल्कुल, पापा मेरे पापा, यस, इस गीत को आप सुन रहे थे। और आज रेडियो कैजे में हम फादर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग उधर ऑनलाइन भी जुड़ चुके हैं। और एक छोटा सा सवाल हमने किया था कि रावण कहाँ के राजा थे। कुछ लोगों का जवाब भी आ रहा है। पद्मावती जी, आपका सही जवाब आया है।

गीता कैसेग्रन आपका भी जवाब आया है, एंड माय कजन बाबू फ्रॉम ओकलैंड आपका भी सही जवाब आया है। बाकी भी जितने लोग हैं, अगर आपको याद है या आपको पता है तो डू टेल अस कि रावण कहाँ के राजा थे। और जब हम बात करते हैं फादर्स डे का, तो जैसे फादर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होता होना चाहिए, आपके पास अगर आपके पिता है या समबॉडी जिसको आप एज अ फादरली फिगर देखते हैं, ये रिस्पेक्ट ये प्यार हमेशा होना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर वन डे। और गीता के सेगरन जी आपको भी हम हैप्पी फादर्स डे कहना चाहेंगे, यानी आपके फैमिली को। और हमें पता है कि हमारे जो भाई जी है, आई एम प्रीटी श्योर ही मस्ट हैव बीन ट्रीटेड वेरी स्पेशल टुडे फादर्स डे के लिए। और जब हम फादर्स डे सेलिब्रेशन बस हमारे शोज में जब भी आते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि जितने लोग भी हमारे साथ हो, कहीं से भी आप जुड़े हैं, वी मेक श्योर कि हम आपको जो भी आपका सेलिब्रेशन है, छोटा या बड़ा, रेडियो केजे लव्स टू बी पार्ट ऑफ एवरी सेलिब्रेशन। तो आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी फादर्स डे। खासतौर पर जितने लोग हमारे साथ फ्रीक्वेंसी 96.9 पे सुन रहे हैं, लीजिए आप सभी के लिए ये इस गीत में भी हम आप सभी को याद कर लेते हैं। और यस, ये भी आई थिंक फ्रॉम द मूवी अकेले हम अकेले तुम, इट वाज समथिंग टू डू विद द लव बिटवीन अ फादर एंड हिज सन। यू लिस्टिंग टू रेडियो केजे लोकल ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया।

जी बिल्कुल पापा मेरी जान, ये गीत हम खास तौर पर से मैं कजन ऑल द वे फ्रॉम ओकलैंड अवि सामी उनकी तरफ से फरमाइश आई थी। तो गाइस दैट्स इट फॉर अनदर संडे टू ऑल द अमेजिंग डेट्स आउट देयर ऑन बिहाफ ऑफ रेडियो केजे लोकल, वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी फादर्स डे। मेक श्योर कि आज का जो फादर्स डे सेलिब्रेशन है आप अच्छी तरह से अपने फैमिली के साथ मिलजुल के कीजिए, और शायद किसी कारण अगर आपके पापा या आपके अप्पा आप जो भी बोलते हैं आपके पास नहीं है आज, कोई नहीं जहाँ पर भी है आपको जरूर आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो चलो दैट्स इट गाइस, हम मिलेंगे आपसे फ्राइडे, आप सभी को फ्राइडे से फ्राइडे को। अगर शायद आप सोच रहे होंगे कि आज आप सभी के प्यारी दुलारी गुजरात की मिठास और केरला के तीखे अंदाज, आज जीबी की आवाज़ जो सुंदर खूबसूरत आवाज़ है, मधुर आवाज़ आपको क्यों नहीं सुनाया दिया फ्रिक्वेंसी पे, क्योंकि आज जीबी स्वास्थ्य लाभ कर रही है। होपफुली शी जॉइंस अस नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ। यू आर लिसनिंग टू रेडियो केजे लोकल एंड दिस वाज योर होस्ट आरजे क्रिश साइनिंग ऑफ फॉर अनदर Sunday. Take care. Look after yourself.